0: विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सुनिले हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार करलु आकाशवाणी दिल्लीरो। श्रोताबंधु आपण कार्यक्रम शुणुछन्ती आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु। शुणन्तु भक्तिगीतर कार्यक्रम वन्दना। कार्यक्रमर प्रथमे शुणन्तु संस्कृत वन्दना। प्रथमे शिल्पी श्रीरंगम गोपालनाथन एवं साथी।

ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

0: थैंक यू सो मच करुणाकर गलागला बेलू आपको ये आपंकर स्वर एमती चली था आपंकर गायकी ओडिया संगीत दुनिया आउ टे सुमधुर हो मिठास भरु माँ सरस्वती आपण कंठरे एमती विराजमान करूँ करुणाकर ये नाटा आम उच्चारण करुचु रेडियो रे किंबा जो मैंने भी स्टेज रे स्टेज प्रोग्राम रे कहते आपण नाटा ये नाटा एमती समस्त कान रु ये चली था आग को भी चली था एति कामना रहिला आज आपण आउ शेषे आम श्रोता जो मैंने नुआ नुआ आरंभ करुछन्ति सिंगिंग करियर दीपद कहतु
1: एक्चुअली आजिकल सोशल मीडिया युग गीत सहजरे मिली जाउछि विभिन्न प्रकार गीत समय थला रेडियो गोटे माध्यम थला गीत सुनिबार किंतु आजिकल बहुत माध्यम रहण गीत सुनिबार तेणु गीत आम हाथ पाखरे कान पाखरे सबुबेले रहिछि ताकु केवल शुणिले हबने निजकु सेतिकि निजे केमिति गायबा से एक्चुअली कोन होउछि ना एबे प्राय पिलामाने सबु गाउछन्ती शुणी शुणिकरि गायबा द्वारा तांकर निजर किछि डेभलपमेंट होने निजर क्रिएटिविटी किछि निजर नुआ किछि वॉइस रे किछि करिवार
0: इच्छा
1: आसुनि डेभलप होने
0: आज्ञा आपण कहउछन्ती गीतर व्याकरण को सेमाने जानु नांती गीत गाउछन्ती
1: व्याकरण को जानिबे न जानु जानंत न जानंत किन्तु निजे चेष्टा करंतु जे सीए केमिति गाउछन ताको फॉलो करि एक्जेक्ट सही काम न करिकरि बा सही हरकत न करिकरि बा सही भलिया वॉइस न करिकरि ताको आमे निजर निज पाई कि गायबा माने निजर परिचय कि सृष्टि पर सेमती गायबा आउ बहुत पिला अछन जे रेकॉर्डिंग रे गाई पर नांती तांकर माने उठे कि हम स्टेज रे देखि बहुत उठे कि बढ़िया गाय उठे किंतु रेकॉर्डिंग रे गाई पर रेकॉर्डिंग रे गाई बर असुविधाटा तांकर नीत पई होउछि जे से माने निजे दक्ष हे नांती मोर अनुरोध कि गीत संगीत विषय जानंतु केवल लाइट गीत बा ए सब गीत गुडा को उठे कि चले बेसी दिन लास्टिंग करिवो नाही वॉइस आमे कुछ किसी समय पाई गाई पारिबो किंतु बेसी दिन जीवनी वॉइस
0: आज्ञा
1: आमे किछि जे शास्त्र जानिथिबा ताको शास्त्र को जानिथिबा माने आमे तार अछि रियाज अछि ऑटोमेटिक आमे रियाज करिबा रियाज कला वॉइस भलो रहिबो आमे आमे गळा रे सेति कि जुवारी आपण आसीबो बा गळा रे सेति लालित्य आसीबो अंतत पके भलो भाबरे सिखनु जे एतिक सिखुजन्ति जेतिक सिखन्दु भलो भाबरे सिखन्दु मन ध्यान देछु आ गीत को भलो भाबरे बुझन्तु फील रे गांतु खाली सुर ताल को नै कि गाइले हबने
2: मोर कहिबा कथा से भलो से गांत जोडा कि हमर हमर परंपरा हमर संस्कृति को रक्षा करि पारिबो
0: सेंति
2: गीत मध्य आमे पसंद करिबा आमो को नै कि संगीत धारा जीवो नहले आमे जो अपन जो कहिले जो विभिन्न प्रकार गीत विभिन्न लैंग्वेज चले ए ट्रेंड एमती कहिछ बदलिबो किंतु गोटे गोटे पीढ़ी यदि एमती करि चलिबे तले आमर संस्कृति धीरे धीरे लोप
0: निहाते भाषा आमर रहिबनी ओडिया भाषा लोके भूली जिबे ओडिया अस्मिता वर्तमान चली छि चर्चा रे

0: वाओ बहुत बढ़िया सतरे ए प्रेमटा निया लगा ही करुणा करो आपण कर उत्तर उत्तर कामना करूछु ए संगीत लाइन रे आपण आहुरी आग को बढ़ंतु ओडिया संगीत जगत रे आपण कर अवदान आउ टिके रहु एतिकी आमी जगन्नाथ को पाखे प्रार्थना करूछु आउ थरे धन्यवाद दउछु
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रे विज्ञापन पर जोगाजोग करंतु मोबाइल नंबर हला
1: 8280306927 किंबा 9449408097 नंबर रे
0: सहज एवं सरल उपाय रे अल्प टंका रे आपण आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रे विज्ञापन दियंतु।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित

0: प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचिन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
3: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया।

0: स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान के पांचवें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
3: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
4: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
1: और अब आज के समाचार।

0: पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा, पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
3: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demographic composition, education, economic activity, migration, disability, language, fertility and other population characteristics. Census 2007 is being conducted digitally with housing listing operation completed from June 1st to 30. The first phase achieved 100% digital data collection. Yangchan Dolma for Akashwani from Lelata.
2: The National Testing Agency NTA has announced retests for 3 papers of the UGC NET examination.

0: ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପ୍ତଧାରା ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶୁଣିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप तंत्र के माध्यम से किया गया है। उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है।

0: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। पवित्र सावन माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। गंभीर रूप से घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जिला सदर अस्पताल में जारी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ थाने के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत में फैल गई। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षा बंधन के दिन संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनिले हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी जयपुर कार्यक्रम आम केन्द्रु प्रसारित हेउछि मीडियम वेभ्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट जोगे एफएमरे 103.6 मेगाहर्ट जोगे। एहा व्यतीत आपण मोबाइल फोन रे न्यूज अन एआईआर आप जोगे आम कार्यक्रम शुणि पारुछन्ति। प्रचार करुछु हिंदी चलचित्रर गीत। प्रथम गीत नेइछु वजह तुम हो चलचित्ररु, शिल्पी अरमान मल्लिक एवं तुलसी कुमार, गीत कुमार, संगीत मीत ब्रदर्स।

चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यता मूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपन निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपनक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी के टूजी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
0: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
0: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से

0: बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
1: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
2: जी दादाजी।

0: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
1: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
2: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
0: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
3: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
4: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
3: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
5: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
2: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा?
3: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
6: सोमेश, सोमेश बेटा, उठो, स्कूल का समय हो गया है।
2: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
6: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
2: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
6: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
2: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
6: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
2: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
6: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
2: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
6: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
2: जी दादी।
0: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।

0: सुमेश बेटा, बेटा सुमेश, अब कैसी तबीयत है?
1: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
0: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
2: जी।
0: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
2: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो, चलो चलो गटक जाओ। शाबाश।
1: ओए, ये तो बहुत कड़वी है ये।
2: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
0: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ। शाबाश।
1: जी दादाजी।
3: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई, लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
0: कैसी तबीयत है बेटा?
1: जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ।
0: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो, दवा पी लो, चलो उठो उठो। शाबाश। पकड़ता हूँ। उठो। चलो चलो। शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
3: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कुछ ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सुमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
4: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
0: अरे सुमेश बेटा, जग गए, कुछ आराम आया बेटा है? बोलो ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
1: जी दादाजी।
2: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई, तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
0: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
2: बेटा।
1: जी।

0: तपिश, जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
1: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
2: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
3: ऐसे नहीं मानेगा
4: साहब, मत करो साहब।
3: चल सिपाही।
5: यस सर।
4: साहब
3: इसको हंटर मारो।
4: साहब
5: जी सर।
4: साहब
2: अबुआ राज अबुआ दिसुम। ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
6: '1857 के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
6: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
6: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
3: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
4: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
3: ओके, तो तुम कोड़ा हो
4: जी।
3: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
4: जी, ये मेरी जमीन है।
3: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
4: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
3: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
4: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
3: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
5: जी सर,
3: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
5: जी सर।
3: और खेत में रात का पहरा बिठा दो।
5: जी सर।
3: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
5: जी सर।
4: नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब। साहब ऐसा मत करो
3: साहब।
4: साहब
3: आओ।

0: ऐसे नहीं मानेगा।
1: साहब मत करो साहब।
0: चल सिपाही। यस सर।
1: साहब
0: इसको हंटर मारो।
1: साहब
2: जी सर।
1: साहब साहब मत करो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। साहब मत करो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
3: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
4: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
3: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया।
5: बाजार में नहीं बेच
3: रहा। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
4: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
6: भाई कान्हू।
1: जी भैया।
6: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
1: हाँ वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
6: क्या हुआ?
1: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
6: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
1: हाँ भैया।
6: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठकी बुलाते हैं, वहाँ विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
1: लेकिन भैया मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
6: तो फिर
1: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
6: हाँ ठीक कहा तुमने।
1: हाँ
6: ऐसा ही करेंगे।
1: जी भैया।
4: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
3: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
4: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
3: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
7: अंग्रेजों का अत्याचार तो अरे हमारी जमीन
8: जब्त।
9: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा

0: जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
1: सही बोले।
0: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
2: हाँ सही कहा।
0: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
1: तो भैया सही बात
2: कह रहा है।
0: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
2: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
0: लेकिन भाइयों अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
3: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
0: अब करो या मर जाओ।
3: अब करो या मर जाओ।
0: अबुआ राज अबुआ किसुम।
3: अबुआ राज अबुआ किसुम।
0: अबुआ राज।
4: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
5: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिद्धो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
4: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिद्धो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
5: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
4: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
5: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम उमंग श्रोता मानी कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी जयपुर केन्द्र। आरंभ करूछु आकाशवाणी लाइव।

0: जय जगन्नाथ।
1: आज्ञा नमस्कार, जय जगन्नाथ, कहतु
0: मु कहली राजेश नायक फ्रम चर्चिका बजार जगत सिंहपुर।
1: आज्ञा केमती कौन अच्छा राजेश, प्रथम कहतु
0: मोटे दुर्घटना होता गोटे मोटरसाइकिल फिट मो आंठा माड़
1: होता
0: मान मेडिसिन फेडिन मारूची मान भांगी तो नाई से अनुसार रेस्ट घरे बर्तमान अच्छी वर्षा पाग कोला कोला पाग आपन को डायल कर
1: सका
0: चा तो मोर मु बहुत चा पिए आगुरी 20 कप 25 कप होता मात्र 10 15 कप हो फिर भी घरे थे पीजे आउ थे घर पर झाड़ू फाड़ कर चा पीयर अच्छी
1: मात्र थे पीछे वर्षा पागर कहले बहुत चा पिए
0: मार्केट रे बहुत पिए मार्केट गला मानने काम जितने मोर तो प्लॉट फ्लॉट काम ना रियल एस्टेट काम अन्य काम जुआडे गलु मुंड टिके टेंशन हला माने चा टिके मार देलु आ चा नले कॉफी आ
1: बहुत बढ़िया। तो किछि स्मृति जदि अछि वर्षा को नै कि राजेश कहंतु हमको।
0: आज्ञा निश्चिंत त बहुत स्मृति अछि गोटाय कोन बहुत अछि मु दि तीनटा कहू छी। एमतिया रज टाइम फास्ट फास्ट बर्षा आसूला भारी क्रिकेट खेले मुझे मानते एम स्कूल हाई स्कूल कलेज एसएम कलेज खेली इंटर कलेज भी खेली कर्क बल ड्यूज बल स्टंपर बल सब गोटे मैच हुए प्राक्ट हुए गोटे दंडा अच्छी सफेद गोटे दंडा से खेलु अचानक कलाहांडिया बेग पूरा माड़ी आसला बर्षा जे सांघाती आम घर टा नि गोटे देढ़ किलोमीटर हम आम मैंने दस बार जन पिला कड़े गोटे पोल टाइप थी सफे पोल पोल तले सब स्टंप बैट ये सब धरिकी पशिगलु बर्षा गड़गड़ी बिजुली आरंभ हो गला बर्षा गाड़ा गाड़ा भी एमती तीन घंटा बर्षा आम सब भितर अच्छे आम आज्ञा हाफ पैंट पिंधल मोर मन अच्छे ये प्यांट प्यांट अंटा जाए पा हेला घर जन फोन कले कड़े गल ना बर्षा गड़गड़ी बिजुड़ी मारा आम पोल तले
1: ऐसी
0: बर्षा सारा ओदा मदा घर को आसिलु घरे तो जानते बापा तो बही बाडेले
1: हाँ।
0: क्रिकेट खेल तुम एत निशा जदि घर अड़ी पड़ था कौट कौन हे था
1: आप
0: कामुड़ दे था बहुत प्रकार सन्देह है एमती रही
1: आगे समस्त बर्षार भिजवाई भल पाती आ घरे माड़ खाय खाई प्राय समस्ते माड़ खाई स्मृति समस्त
0: आउे जो महावात्या कथा कहू अनेश्वत महावात्या आम तो जगत सिंहपुर जिले में भाई जानते पूरा मान सुपर साइक्लोन प्रबल होता पूरा प्रबल आम से कौन ईटा घर उपर चाला छपर मतलब मर्णिंग रू उठी ब्रश पुरे पलि जा बाहरी जा घर एमती पवन बर्षा मुझे देखु मानने बड़ बड़ चाकुंडा गच ये नड़िया गच भांगिक पड़ू मानने घर छपर उड़ी चली जाऊँ
1: मुझे
0: कामेश्वर महादेव मंदिर अच्छे से रहीगली आ रहीगली जी कड़े
1: तेना
0: ब्रश टा कली से किसी तो पाल नड़िया पैड़ गदा है पैड़ फटे खाइली राति जाक मुझे रही आज्ञा मुझे भयंकर से बात्या तीन शह किलोमीटर पवन होता किसी नाला देखला हाकार पड़ी बहुत लोग भी एस्तमा साइड समुद्र जल माड़ी आसला भासी गले बहुत लोग जगत सिंहपुर मले तेणु भयंकर महावात्या से आज भी आप टपिक मोर गोटे मन को चली आसला
1: बहुत बढ़िया स्मृति अनुभूति को नहींक आज कार्यक्रम वर्षा को नहींक वर्षा सहित आप कहले समस्त कि गोटे नुह बहुत गुड स्मृति रही था।

0: अपा नमस्कार।
1: नमस्कार, कुहन्तु। बसंती पूरा शेष समय रे आपण फोन कले, केमती अछंती कुहन्तु।
0: अपा वर्तमान ठीक ठाक अछि, मास्टरला त पढ़िथिली आउ
1: पढ़िथिले माने
0: ज्वर होइथिला किरा सांघातिक ज्वर।
1: अच्छा, मासे हला ज्वर होइथिला?
0: आज्ञा।
1: ज्वर केमती हला? मासे जाय छाडू नथिला सेई सबुठ
0: बड ज्वर छाडू नथिला कोन कि गा जे मरैथिला आपण कहथि नथिरे।
1: हां,
0: गांग बोलैथिली तापर मोर के माने अस्थिगे हे गोटे कडा आसु मुदिहरे जण लागी काछ।
1: हम आमे भाबिलु वर्षा रे बहुत भिजी गले बोली के
0: नाही।
1: भुवनेश्वर रे वर्तमान वर्षा होउछि कि?
0: वर्तमान आदि राति चारटा छाड़ी जी पदिन जो लगी बर्षा कल दिन जग पदिन रात जग
1: होता
0: है
1: रात बारटा छाड़ी जाती। वर्षा को नहीं कि अनुभूति अच्छी कहतु बासंती।
0: अब वर्षा अनुभूति

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि यह समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की

0: आलोचना की है, जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦରେ ଲେଖରେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଝରିଣୀ। ପ୍ରଥମେ ବେହେଲାରେ ଧୁନ୍ ଶୁଣିବା, ଶିଳ୍ପୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହ ତବଲା ସଙ୍ଗତ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁ।

चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फार्म दाखल करंतु आज ही एही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 1553333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।

कोई मेरे दिल में है। ए चलचित्र गीतटी सहित शेष करुछु हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम। श्रोता मैंने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी जयपुर केन्द्र। वर्तमान समय दिन 2:30 हेबाक जाउछि। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे किछि समय सूचना विरती परे रिले करि प्रचार करुछु आकाशवाणी कटक केन्द्र।

किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे पेंगेस्ट फिल्म के गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अब सुनिए मदर इंडिया फिल्म से ये गीत।

शकील बदायूनी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मदर इंडिया फिल्म के इस गीत में संगीत नौशाद का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गाने का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: ಸಹೇಲಿ सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
0: हेल्दी नमस्कार। मैं समझ गई थी कि आपका हेल्दी नमस्कार होगा
1: क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो धन है, वही हमारा सच्चा धन है।
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: और अभी बारिश का मौसम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, सबका, घर वालों का, परिवार का और स्वयं का। सखियां अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं स्वास्थ्य के मामले
0: ये
1: में।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। क्योंकि सबका ख्याल रखती है पर खुद के लिए बहुत हमेशा कभी सोचती नहीं खुद के लिए, है ना?
1: ये तो हम अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई परिवार का ध्यान रखते रखते आप अपने आप को पीछे कहीं न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परिवार की धुरी तो आप ही हैं।
0: और जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हर त्योहार हम उसी उमंग उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे

0: कि आज नागपंचमी मनाई जा रही है।
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: आज हर घर में नागपंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है। सारे श्रोताओं को, सखियों को नागपंचमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना भी शुरू कर दिए।
0: बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और साथ में जब भाई बात हो रही है कोई पर्व की, तो पर्व आते ही याद आ जाता है खाना पीना, भोग प्रसाद, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बच्चे जो बाहर के खाने की जिद करते हैं, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए या उस आकर्षण को कैसे कम किया जाए? बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं सोनाली, और हम बात भी करेंगे, इस पे विचार विमर्श भी होगा, तो जानेंगे कि कैसे भाई मिलजुल करके ये चीज के प्रति जरा जो अट्रैक्शन है ये बच्चों का कम
1: किया जाए। और साथ ही आज बहुत सारे साथियों को, श्रोताओं को इंतजार है कथा सुधा का, हमें भी इंतजार है क्योंकि आज तेतर भाग दो आज हम सुनने वाले हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल के व्यंजन, इसके अंतर्गत लूची, आलूरदम और मिष्टी दोई, ये सारे व्यंजन बहुत बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपने चखे हैं, और चखे हैं तो कैसे लगे आपको, या आपको उसकी विधि अगर मालूम है व्यंजन की तो आप हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल।
1: और आप क्या करें,
0: बाहर तो आज बारिश हो रही
1: झमाझम।

0: एक स्वाभाविक से संगीत टापुर टुपुर वाली ही उत्पन्न होने लग जाती है।
1: और अब इंतजार है श्रोताओं के साथ हमें भी कथा सुधा का,
0: तो चलो
1: तो सुनते हैं आज तेतर कहानी का भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ महाअनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को।
5: लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, जिनो लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कलुए नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही, ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ?
6: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ उड़िया, आ जाओ।
4: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: वृष्टि टापुर टूपुर जब पड़ती है ना दीपा, तो कितना उमंग और उत्साह का मौसम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दिल भी कहीं एकदम ऐसा करने लगता है कि मन में जैसे

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा इस बकरी को पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला लाओ, तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा, दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी, लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

0: का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हमें लोगों के सिर जाएगी, कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं। जभी तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
2: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो हा? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला। हाँ
3: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ।
2: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ है। अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
3: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे।
2: हाँ तो क्या, मुझे पागल समझती है तू है? पागल समझती हो? वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
3: सही कह रही है। भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
1: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्चे से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था न रोते। इस भांति दो महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
2: बहू को दो चार दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता।

0: माँ बहू के महके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है।
1: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
2: माँ ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं।
1: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी घाट पर अचेत पड़ी हुई हैं, स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
2: अरे अम्मा क्या हुआ, कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया?
3: अरे आ गए आप, देखिए ना अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही है।
0: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब न बचूंगी, हाय भगवान अब न बचूंगी,
3: जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो,
0: ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान।
3: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
2: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा कैसी है तबीयत?
0: हाय बेटा भगवान साफ करते हैं, हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है, अब ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है, देखो हाँ मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
2: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं।
0: अरे नहीं बेटा रहने दो सब, अब अच्छा हुआ मेरे सिर आई है, हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही, हाँ तू मेरे ही सिर सही, हाँ बेटा अब ना बचूंगी, हाय राम हाय भगवान अब ना बचूंगी दामोदर, समझ लो कि बस सब सब खत्म, हाँ कह देती हूँ अच्छा हुआ मेरे सिर आई, बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर, हाय कहीं कोई मत जाओ।
2: अम्मा अम्मा अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूँ, ठीक हो जाओगी तुम।
0: अरे कहाँ जाते हो, अरे नहीं नहीं बेटा डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे, अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है, डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, दस बीस वो भी ले जाएगा मेरा, डॉक्टर पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा, बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ बेटा, अब बैठ कर भागवत पढ़ो, हाँ अंतिम समय है, अब ना बचूंगी, हाय राम अब ना बचूंगी, पढ़ो पढ़ो बचो भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है बस, तो जान लेकर ही जाएगी, हाँ कह देती हूँ।
2: तेतर तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है,
3: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
0: अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहो बेटा, नहीं नहीं नहीं नहीं बच्चों को सब आराम से रखना, भगवान करे तुम सब सुखी रहो, तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ, अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है, राम करे कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता, राम राम, अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, बस यही विनती है तुम सब खुश रहो, हाय हाय अब न बचूंगी, बस मैं तो चली।

0: दामोदर खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना, हाँ कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को।
1: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा ना बचेंगी। बड़ा दुख हुआ, उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुदमुही बच्ची का क्या मूल्य था जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर हो माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
2: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी, आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं।
0: बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना ना मारो, भला साबुदाना मुझसे खाया जाएगा है? जाओ जाओ थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना, अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला। बड़ा दर्द होता। सुन बेटी, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ वो भी चौक से। हाँ अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी, अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ है, बड़ा दर्द है भैया।
1: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही, दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की महरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
3: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तेतर का जन्म हो।
2: हाँ हाँ सही कहती हो, तेतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे पर तेतर ना दे।
1: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
5: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
6: और आज घर में क्या चल रहा है? आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्योहार मन रहा है।
5: बिल्कुल।
6: तो ये जो है ना, ये जो त्योहार होता है ना, ये हमारा देश त्योहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नाग पंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
5: बिल्कुल। और सुना ली, नागपंचमी के दिन में श्रद्धा

0: सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नाग पंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती है। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
0: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
1: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
1: ये हमारे साथी ने कहा और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद
0: जी।

0: और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा की निभा होनी चाहिए। तो कहती है कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नाग पंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका पालन कर रही है।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर वो बनेंगे ही नहीं जी तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा।
1: और उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है, वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें ना वो चखेंगे ना वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है उसका आनंद नहीं लेंगे तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते हैं कि कितना पौष्टिक है, इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है और इसमें यानी ये जो जो व्यंजन है स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जब ये बात बच्चों को बताई जाती है तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन देखो ना आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती से जिंदगी हमारी हो गई है और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी या कहीं यूं कहें खिचड़ी पोहा उपमा कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
0: पर आजकल बच्चे जो है ना कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में और यही कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है
1: और उन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
0: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है।
1: बिल्कुल सही
0: बच्चे हैं और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों के पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है तो वो तो उन्हें इजी है और चटपटा स्वादिष्ट है।
1: चटपटा स्वाद है और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं तो वो जो एक नहीं खा रहा है उसका भी मन करेगा या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो कितना अच्छा है।
0: और फिर वो अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो,
1: ऐसा क्यों करते हो। बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, सफेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं और ये वहीं पे देखो आप विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती है
0: या फिर ना के बराबर होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। अच्छा बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में जरूरत नहीं है इतनी जितना ये एक पैकेज के द्वारा जा रहा है, तो वो बच्चे समझेंगे। उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है
0: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: आजकल से बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप।

0: हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है। हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास जाता है।
1: सुनाली, पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं, जहाँ छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्या है, यानी उनके दूध के दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा बिल्कुल एक सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
0: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे। अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए,
1: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार है। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे शो सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें बताएं।
1: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो वो ज्यादा दिल के करीब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उससे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
0: और
1: है,
0: और समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरी शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट

0: ना पसंद करते हैं लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल है उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक वो बनाएं भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। क्योंकि जब आप खुद करेंगे उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
0: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उस पे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से बच्चों को अगर डोसा का बैटर है उससे आपने एबीसीडी बना के दिया बच्चों को तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को करके एबीसीडी का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे।
1: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीट रूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो ये सब अलग अलग कलर के पराठे बना के दीजिए तो उनको बहुत सुंदर लगता है, बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
0: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहाँ आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था। भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत अच्छी।
0: मजबूरी में हम खा सकते हैं पर जहाँ पर हम कोशिश कि ना खाए वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
1: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है और वो भी वहां पर विशेष जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे बच्चे तो अनुसरण करते हैं और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि हमें पहले अपने आप में सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
0: एक साथी कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में ही नहीं बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है, चिप्स पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ। इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के साथ बड़ा प्रचार किया जाता है। रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी सुविधा के कारण गृहिणियों को भी आराम मिल जाता है।
1: जी बिल्कुल। और एक और संदेश ये कह रहा है कि जो बच्चे देखते हैं जंक फूड बस उसे देखते ही मचल जाते हैं और ये है कि इनके लिए बहुत नुकसानदायक है सेहत के लिए। इनमें जो मसाले केमिकल का प्रयोग करते हैं बनाने वाले वो स्वास्थ्य का कतई ख्याल नहीं रखते। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री पर जोर देना होता है। चटपटी मसालेदार चीजें बड़े आदमियों की तरह बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें अपने बच्चों को इनसे दूर रखें।
0: वही एक साथी कहते हैं कि आजकल ये बहुत स्वाभाविक हो गया है, रंग बिरंगी पैकिंग, स्वाद और विज्ञापन उन्हें जल्दी आकर्षण करते हैं। कभी कभार पसंद की चीज खाना गलत नहीं है लेकिन अगर यही रोज की आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है। अब तो जंक फूड 10 मिनट घर पर आ जाता है, सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। कि हाँ भाई कभी बीमार है या कभी जन्मदिन है या फिर कभी कोई खास अवसर है, 2-3 महीने में 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
1: और
0: और बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक हम गर्मी की छुट्टी में जब सारी बहनें मिलती हैं तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीजें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मजा आने लगा और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप

0: भाई दिल किसी पे भी आए, ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए,
1: है ना, मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी।
0: हाँ ये बिल्कुल सही है।
1: एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3/4 कप चीनी अगुड़, 3 से 4 चम्मच गाढ़ा दही, हंकड़। बनाने का तरीका, दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा कर ले, एक अलग पैन में चीनी को पिघलाकर कैरेमल बना ले, कैरेमल को गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिला ले, दूध के मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे, अब इसमें गाढ़ा दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट ले, इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन कूलर में डाले और बर्तन को ढककर 7 से 8 घंटे तक रात भर के लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दे, जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर ले और फिर सर्व करे, मिष्टी दोई।
0: तो भाई देखियो सखियो, हमारे सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू, फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम, प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही 1/2 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, हल्दी छोटी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप अब जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें और उनमें हल्के छेद छेद छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा भुने, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकंड के लिए भुने, फिर अब टमाटर हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुने जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग 1 कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए, हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
1: और इसके साथ में लूची है, बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। सिमरन के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है और इसका रंग सफेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और

0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा। एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है कि बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है। जी हाँ बिल्कुल है, और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है।
0: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूँ
1: जी।
0: तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी, पर हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल सही।
0: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है, सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
1: सारा दिन
2: 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है उस चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये। तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर एसेंशियल।
1: बिल्कुल।
2: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था। और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है। तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है।
2: हाँ,
1: इस बारे में बताइए।
2: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट। तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है,
1: जो
2: दो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं, बेस्ट देते हैं क्योंकि जीतना तो है। तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन, तो इसके लिए

0: फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टुवर्ड्स प्रिवेंशन, मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है. बट जो प्रिवेंटेबल है वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं. अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है, सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन. क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months to 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक.
1: तो वो पूरा साल
0: जाता है. ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है. कॉलेज लाइक
1: मतलब क्या होता है?
0: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती
2: है. में हम पढ़ते हैं
0: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है तो ये होती है इंजरी. 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है. तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट. और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड. तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं वैसे, बहुत बेसिक से चालू होता है और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है. और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है. बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट. बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है.
2: बताइए ये कितनी महत्वपूर्ण.
0: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं. या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है.
2: बिल्कुल आपने सही कहा. आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं. आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
0: जरूर है, जरूर है. पर हम ऐसे हैं सब, इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है.
2: यानी जब आग लगती है तभी हम
0: जब ही थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है. मतलब फर्स्ट साइन इज पेन.
2: जी,
0: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है. कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है. उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है. पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 स्टेप्स आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो तो वो नॉर्मल नहीं है. अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो. अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग. मैं एक स्टोरी बताती हूं आपको. एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया. तो मैंने बोला फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया. तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं. तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा. तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते. देखो जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे. पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें

0: लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है। वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए। अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है।
1: डॉक्टर साहब यहाँ ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में। ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं फिर आगे की बातें करते हैं।

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी?
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम ज्वाइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग

0: अदा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
1: कटोरी जैसा,
0: कटोरी हिस्सा, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें। अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं
1: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
0: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है।
1: जी,
0: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड, बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
1: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, कितना इंपॉर्टेंट,
0: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, That would be the safest way to ensure health.
1: कितनी बड़ी बात
0: है और ये कितनी पुरानी बात है, हमारे भी संस्कृति में यही बात है
1: जी,
0: योगा में यही बात है,
1: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में
0: एक्सरसाइज, सही मात्रा
1: है ना,
0: और वो ही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस Not too much.
1: जी, और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
0: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए।
1: जी,
0: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए।
1: जी, आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था, बट पोरोसिस भी,
1: हाँ दोनों चीजें
0: दो अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर, जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
1: हड्डियां
0: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं।
1: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं।
0: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी, अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट

0: को टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं। मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का डेफिशिएंसी होती है। विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है। हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है। एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है। दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम, नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
1: उसका पता बड़े होने पर लगता है।
0: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप। पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए। तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है। मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए। तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है। अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड। और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में। अगर अर्ली ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी सी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें यह चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है।
1: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
0: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है, मोस्ट पीपल आर लिविंग, लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए, सिर्फ लंबा नहीं अच्छा जीवन चाहिए।
1: बिल्कुल सही है। आगे की बातें करते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं आप?
0: गुजारिश की गुजारिश करूंगी।
1: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए यहाँ पर। तेरा जिक्र है,
0: तेरा जिक्र है, करेक्ट।
1: क्या गाना है,
0: बहुत ही सुंदर।

0: देखिए गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं, एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि इसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइन करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल, अगर वो आप सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं,
1: वो ही है जो सब चलाता है
0: जी।
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स, इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती है धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल कि जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको, वो बॉडी की इनबिल्ट ही है, वो मैकेनिज्म भी
0: के बाद रिलैक्सेशन
1: की जरूरत है, तभी सब चलता है
0: जी।
1: एक ये करना है, एक वो करना है, उसके लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं, और थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का। तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप। एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे।
0: Okay.
1: मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे। अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा,
0: तो वो एक्टिविटी चेंज।
1: हाँ, अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं, फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग। उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपी।

0: अगर हम नियम से चले कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है,
1: ये बड़ा मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट
0: मुश्किल ही है
1: ना पड़े।
0: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है। और कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है
1: जी,
0: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है।
1: क्या बात,
0: क्योंकि अदरवाइज ये समझाने के लिए मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ।
1: जी जी बिल्कुल,
0: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं, स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला।
1: हाँ।
0: उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है।
1: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं।
0: एक्चुअली जरूरत इसलिए है क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की, या तो रेस्ट ही करते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
1: जो दोनों एक्सट्रीम है।
0: एक्सट्रीम है।
1: एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं, लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
0: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में, मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989 और तभी तो, लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज अबाउट 75-76 years। सो व्हेन आई ज्वाइंड 84 में, मैंने ज्वाइन किया 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी, और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे, मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है, मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे। रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी। अभी जो जितने सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली जरूरत के लिए कर रहा था, जो अभी बढ़ गया है ये सब, इसके लिए ये सब आए हैं। तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है, पहले पेन मैनेजमेंट होता है। अगर आप आए, समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से। मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
1: जी,
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर पेन मैनेज जब भी होता है तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का, समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
1: जी।
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स, इंडिविजुअलाइज्ड होता है
1: बिल्कुल।
0: तो ये प्रोसेस होती है। अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है
1: जी। तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपी।
0: हाँ, बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो या एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है
1: जी।
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूं पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है, एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है।

0: क्या नहीं करना चाहिए. एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग. जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट. तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज. उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है. उसका जितना आप इंपॉर्टेंस समझाओगे पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए.
1: जी,
0: जैसे मैंने बोला इंजरी

0: था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है
1: जी.
0: मुझे मेडिसिन करना था MBBS और उसके बाद MD या MS, नहीं मिला, एक दो मार्क से छूट गया.
1: अरे रे.
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये. जैसे मैंने बोला, मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, दैट वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड. एंड इन 84, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया एक दो साल के बाद, समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था 84-85 में, कुछ नहीं था. फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड हैं इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में. तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग कोर, स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए. तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन. और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से मेरे आसपास के लोगों के और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी, थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे. मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स, जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है.
1: अरे गजब.
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है. मेरे क्लिनिक में आते थे. एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है. और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट. तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे.
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 to 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, 10 years. जब भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है
1: जी.
0: मैं कभी उसमें नहीं थी, बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और लगता है. और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है. तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद BCCI, बट BCCI ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन ट्रीटमेंट्स. आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर. या सो या ही इज बीन अ प्लेजर. और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है कोई भी नहीं. मतलब एक बार जब भी मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नोबडी एंड ही वॉज एट द टॉप. तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूं, आई एम वेरी सॉरी. और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज.
1: वाह,
0: बहुत ही हम्बल आदमी है. एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोस 10 years दैट आई वाज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल.
1: क्या बात है.
0: ना, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है. ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं.
1: क्या बात है. तो जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा वो क्या फीलिंग
0: होती
1: है.
0: मुझे कुछ अलग नहीं लगता है. नहीं, सच नहीं लगता है. इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सेम. आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड. कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है. कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है. कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है.
0: तो अच्छा लगता है. दीज आर द पर्क्स, साइड पर्क्स.
1: ऑफ कोर्स.
0: बट नो, इन रियलिटी नथिंग इज डिफरेंट
1: जी. एवरीबॉडी, चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही है जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह
0: ली.

0: चुड़ लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर लोगों से, और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है, बिकॉज वो उनके प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, यू नो लाइक दीज पीपल आई नो मैंने नहीं किया तो कोई और करता था. मुझे आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम, बट ऑल दी अदर्स सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वही प्लेजर देता है.
1: क्या बात है. क्योंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए.
1: ठीक है, क्योंकि बात दंगल की हो रही है,
0: दंगल,
1: तो दंगल का
0: ये
1: गाना सुनवाते हैं, नैना.

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी?
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी।
1: महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं, बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को
0: जी।
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन

0: तो वो जगहों पे कम होगा
1: जी। तो
0: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
1: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है।
0: मैं उसको सलाह देके अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो। और आप बोल रहे हैं छोटे छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें करी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स
1: जी,
0: हेमिप्लीजिया,
1: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।
0: हाँ, बहुत
1: सीरियस मैटर है,
0: बहुत है। अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में। तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है। बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है, सर्जरी इज इंपॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है। मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट फंक्शन वो ही नहीं आता,
1: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन।
0: यस, इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, और क्योंकि कई चीजें छोटी है समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा, अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा
1: जी। बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी कितनी डिफिकल्ट होती है?
0: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस
1: जी।
0: मसल इज प्रोग्राम्ड, जैसे मैंने बोला ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी। अप टू 30 इयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग, 20 टू 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है। ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव है तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है। पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है, तो वीकनेस बढ़ जाता है। उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के। तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है
1: जी।
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स।
1: वो तो बहुत
0: फ्रैक्चर की उसकी डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल। सो वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है
1: जी। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय
0: बहुत ही जरूरी है, और वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं बोल रही थी हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं। एक तो 95 ईयर ओल्ड थे जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week यूज टू कम टू क्लिनिक, एंड 95 ही पास्ड अवे, वन डे बिफोर दैट ऑल्सो ही हैड रिक्वेस्टेड होम विजिट फॉर एक्सरसाइज।
1: क्या बात है, इतना
0: सम पीपल आर रियली। और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास,
1: वाह वाह,
0: हाँ, और हमारे क्लिनिक में गाना गाते थे।
1: क्या बात,
0: ट्रेडमिल पे चलते चलते।
1: क्या क्या बात है, क्या बात है, जिस स्टूडियो में यहाँ हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ, हाँ,
0: वो भी 10 साल आए हमारे पास रिकॉर्ड कर, जस्ट एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज।
1: गजब, क्या बात है। चलते चलते

0: गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया है, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा, वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा।
1: यस।

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो
0: जी,
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो। जब भी पेन हो
0: जी
1: तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व।
0: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी
1: एक्सरसाइज एंड डाइट इज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना, हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो, जिस दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो,
0: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है। डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आगे फिर आइएगा और फिर हमारे श्रोताओं से
1: मुखातिब होकर
0: जरूरी बातें बताइएगा।
1: आई एंजॉयड, थैंक यू,
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: প্রচার কল দেশিয়া ভাষার কার্যক্রম জয়দীজন উপস্থাপনা কলে মনোজ কুমার পাত্র এবং সন্তোষী আচারী আকাশবাণী জয়পুর সময় বর্তমান সন্ধ্যা ছটা বাজবা যাচ্ছি হিন্দি সংবাদ শুণন্তু রিলে করে প্রচার করুছু আকাশবাণী দিল্লি রু।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन में विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर

0: ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो। आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रो। कार्यक्रम आम केन्द्र प्रसारित हो मीडियम वेव्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ज जोगे एफएम 103.6 मेगाहर्ज रे आम केन्द्र कार्यक्रम शुणुंट मोबाइल फोन न्यूज ऑन एआईआर आप साहय आकाशवाणी जयपुर केन्द्र समस्त कार्यक्रम आपणपरिवे। श्रोताबंधु बर्तमान जाणवा आम चलित अधिवेशन प्रचार होगा थी कार्यक्रम संपर्क में सूचना हिंदी चलचित्र केतोटी गीत शुणे संध्या 6:10 संध्या 6:20 प्रचार करिबु श्रीमद भागवतर 172 भाग। आज संध्या 6:30 युवशक्ति संध्या 6:45 आंचलिक संवाद संध्या 6:55 आज प्रसंग एवं राति 7:00 शुणे प्रायोजित कार्यक्रम ओडिशा लेवलहुड मिशन प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु एवं जिला हालचाल शुणे राति 7:25 राति 7:30 प्रचार करिबो कृषि और कृषक कार्यक्रम एथिरे चासी भाई को द्विपद कथारे रहिछि जल संरक्षण ओ स्वल्प जलसेचन प्रणाली। राति 8:00 शुणे ओडिया चलचित्र केतोटी गीत राति 8:15 प्रचार करिबो ओडिया रे आलोचना कांदणा और पारंपरिक पल्ली गीत आलोचक आलोचिका जाह्नवी पंडा। राति 9:30 शुणे नाटक हस रचना दीनबंधु नायक प्रयोजना शशिभूषण दास एवं सहयोगिता लक्ष्मीधर साहू। राति 10:00 शुणे केतोटी सुगम संगीत एवं राति 10:30 शुणे हिंदी चलचित्र केतोटी गीत। बंधु ए थिला आम चलित अधिवेशन प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में किसी सूचना आकाशवाणी जयपुर। वर्तमान जानवा आसंता काली अधिवेशन प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में सम्यक सूचना वंदना प्रचार कर सका 6:05 शिल्पी विनोद शर्मा साधना दास मोहम्मद सिकंदर आलम एवं इतिश्री बेहरा गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 111 भाग शुणे सका 6:25 आदिवासी संगीतर कार्यक्रम रिंजुड़ी शुणे सका 6:45 बंडा संप्रदायर गीत परेषण करेंगे सनिया मांद्रा एवं साथी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ସନ୍ତୁର ବାଦନ ପରିବେଷଣ କଲେ ପଣ୍ଡିତ ଉଲ୍ଲାସ ପାପଟ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 8:45 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5

0: प्रतिशत रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साथ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network destroyed

0: ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉ हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।